0: This is Talk 100.3.
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे बुलों के साए से खेलूं, चाहे कर...

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

कह दो हर नजर से हा, सबको ये बता दो कह दो हर नजर से हा, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हा।

0: Talk 100.3.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है?

0: Talk 100.3. Talk Music. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,

0: ना रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: Don't chase banks, come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
2: This is Talk 100.3.

0: ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल।
2: आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे, लाल लाल सिग्नल।
1: सिग्नल को तोड़ दो, बात बड़ी सी।

0: हल्ला मचाएंगे, धुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ठम ठम ठम। हे मन्नु भाई मोटर चली पम पम पम,
1: मन्नु भाई मोटर चली पम पम पम।
2: This is Talk 100.3.

0: वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला
1: Talk 100.3

0: Talk 100.3.
1: कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही।